शो प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तमाम सुनते कानों को इस मॉर्निंग प्रोग्राम में वेलकम जयन वखिर रहले एलन वसेलर मरहबा हबीबी यहा अबली करिए मुझे कहते हैं सुबह तो बरता रही और इस वक्त आप सुन रहे हैं मॉर्निंग डब प्रोग्राम।

So today is the 27th September. The day is a Sunday and the year is 2026. 2026. So guys, सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉप स्टोरीज शामिल हैं. सो बिल्कुल चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज.

पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कड़ा है और कड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कड़ा है और कड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि हरमैन शरीफ की सलामती और हुरमत पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हरमैन शरीफ की सलामती हमारी रेड लाइन है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बैक चैनल राबते कायम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत आता तारन ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बैक चैनल राबते कायम हैं। लॉन्ग मार्च मुलतवी करना सियासी हिकमत अमली, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे शौकत यूसुफ़ज़ई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च मुलतवी करना सियासी हिकमत अमली है, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, जबकि अमली तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की जाए तो तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मिनहान से भतीजे के इंतकाल पर ताज़ियत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मिनहान से भतीजे के इंतकाल पर ताज़ियत। इस हवाले से वज़ीर आला मिनहान अफरीदी की रिहाइश गा गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सूबाई वजीर के भतीजे शायान के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहाने की और मरहूम के दर्जात बुलंदी और एलिहाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की।

So welcome back once again. This is me, Subhadra Pradharik, and now you're listening to Morning Rubber Gum. So guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे. तो चले प्रोग्राम में सबसे पहले सवाल शेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सवाल का सही जवाब देता है और कौन बनता है आज के प्रोग्राम में मॉर्निंग स्टार.

So, बिल्कुल सवाल ये है कि सवाल गौर से सुन लीजिएगा, देखते हैं कौन सवाल का सही जवाब देता है। सवाल ये है कि वो क्या है जिसका वजन नहीं होता, ठीक है, वो क्या है जिसका वजन नहीं होता लेकिन बाज़ुकात उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है, किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है उसे उठाना, वो क्या है जिसका वजन भी नहीं होता लेकिन बाज़ुकात उसे उठाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सवाल अगेन रिपीट करता चलूं, सवाल ये है कि वो क्या है जिसका वजन नहीं होता लेकिन उसे उठाना मुश्किल होता है। सो बिल्कुल जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा मैसेज और दीजिएगा इस सवाल का जवाब, और मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट या क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टाइप कर सकते हैं कैपिटल वर्ड्स में RAK रेडियो अमन करक, RAK की आवाज पे अपना नाम, अपने इलाके का नाम, और लास्ट में इस सवाल का जवाब कि वो क्या है जिसका वजन भी नहीं होता लेकिन बाज़ुकात उसे उठाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8583 पर, यानी कि 85 83 पर,

सो चलते एक सॉन्ग की जानिब, प्रोग्राम में एक सॉन्ग सुनते हैं। आप लोग कॉल नहीं कर सकते, आपकी कॉल्स मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा। इस प्रोग्राम में आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिल्कुल चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब, पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग की जानिब बढ़ते हैं और इस सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं, एंजॉय कर लेते ये सॉन्ग। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा।

सो गाइस बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं और सारली बग्गा की वॉइस में हैं और सारली बग्गा बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग गाते हैं और ये मेरा क्या कहते हैं कि फेवरेट सिंगर है। सो गाइस आजकल हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, जिंदगी में कामयाब हों, अपने पांव पर खड़े हों और एक बाइज्जत मकाम हासिल करें। ये ख्वाहिश बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ अच्छी तालीम और अच्छी नौकरी ही एक कामयाब इंसान की पहचान है। गाइस हकीकत यह है कि तालीम इंसान को इल्म और शोर देता है, लेकिन अच्छे अखलाक इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। एक इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो दूसरों की इज्जत ना करता हो, झूठ बोलता है या लोगों के साथ बुरा सलूक करता है, तो उसकी तालीम का असल मकसद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। गाइस, हमें अपनी नई नस्ल को ये समझाने की जरूरत है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने या बड़ा ओहदा हासिल करने का नाम नहीं है। असल कामयाबी ये भी है कि इंसान अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और जरूरत के वक्त किसी दूसरे इंसान के काम आए। इंसान की पहचान उसके लिबास, दौलत या ओहदे से नहीं, बल्कि उसके अखलाक, गुफ्तगू और रवैये से होती है। गाइस, नरम लहजा, अच्छा बर्ताव, सच्चाई, वादे की पाबंदी और दूसरों के एहसास का ख्याल ऐसी खूबियां हैं जो इंसान को मुआशरे में इज्जत देता है।

0: सो गाइस, बच्चों को शुरू ही से ये सिखाना चाहिए कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच इंसान के किरदार को मजबूत बनाता है। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि किसी कमजोर का मजाक उड़ाना बहादुरी नहीं, बल्कि किसी कमजोर का सहारा बनना इंसानियत है। अगर कोई शख्स मुश्किल में है तो उसकी मदद करना, किसी गमजदा इंसान की बात सुन लेना, किसी बुजुर्ग का एहतराम करना अच्छी तरबियत की अलामत है। गाइज, बच्चों की तरबियत सिर्फ अल्फाज और नसीहतों से नहीं, बल्कि घर का माहौल भी उनके शख्सियत पर गहरा असर डालता है। बच्चे अपने वालिदैन को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वालिदैन घर में एक दूसरे से इज्जत से बात करें, गुस्से में भी जुबान पर काबू रखें, सच बोले और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, तो बच्चे भी उनकी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम नई नस्ल में अच्छे अखलाक देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने रवैये पर भी तवज्जो देनी होगी।
1: तो क्या जाने, तेरे बिन जी ना सकेंगे।
0: आज हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद या अफसर बनो, बल्कि ये भी कहना चाहिए कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो। ऐसे इंसान बनो जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे, जिसकी बात से किसी का दिल न टूटे और जिसकी मौजूदगी दूसरों के लिए आसानी का सबब बने, क्योंकि मुआशरे को सिर्फ काबिल लोग नहीं बल्कि जिम्मेदार और बाखलाक लोग भी चाहिए होते हैं।
1: तेरे बिन मर जाएंगे तो क्या जाने।
0: गाइस, नौजवानों को ये समझना भी जरूरी है कि हिलाके राय जिंदगी का हिस्सा है। हर शख्स हमारी बात से इतफाक नहीं करेगा, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद दूसरों की इज्जत करना एक अच्छे किरदार की निशानी है। किसी की राय पसंद न आए तो बदतमीजी की बजाय दलील से बात की जा सकती है। गुस्से में सख्त अल्फाज बोलने की बजाय चंद लम्हे खामोश रहना कई रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। बर्दाश्त, सब्र और एहतराम जैसी आदतें न सिर्फ इंसान की अपनी जिंदगी बेहतर करती हैं, बल्कि मुआशरे में भी सुकून पैदा करता है। हमें नई नस्ल को ये भी सिखाना चाहिए कि दूसरों की कामयाबी देखकर हसद ना करें। अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी कामयाबी से सबक लिया जा सकता है। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी कामयाबी के साथ दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करे और अपनी तरक्की को सिर्फ अपने फायदे तक महदूद न रखे। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करें, उनकी बात सुने और उन्हें अच्छे फैसले करने का मौका दे। सिर्फ डांटे के बजाय मोहब्बत और समझदारी से समझाना ज्यादा मौसर हो सकता है। नौजवान अगर कोई गलती करे तो उन्हें हमेशा नाकाम इंसान समझने की बजाय उन्हें अपनी गलती से सीखने का मौका देना चाहिए। एक अच्छी बात, एक मजबूत हौसला अफजाई और एक मुखलसाना मशवरा किसी नौजवान की जिंदगी का रुख बदल सकता है। गाइज, याद रखिएगा, आज के बच्चे ही कल के उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी अफराद, वालिदैन और माशरे के जिम्मेदार शहरी बनेंगे। अगर आज हम उन्हें सिर्फ तालीम देंगे तो वो पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर तालीम के साथ अच्छे अखलाक, एहसास, बर्दाश्त, सच्चाई और

अच्छा जी, आपके मैसेजेस प्रोग्राम में आ चुके हैं, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सवाल प्रोग्राम में मैंने ये पूछा है कि वो क्या है जिसका वजन भी नहीं होता लेकिन बाज़ औक़ात उसे उठाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है।

दोस्तों बिल्कुल फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो रकीब पटक ने मैसेज किया है। रकीब पटक तारिक भाई गुड मॉर्निंग, चले थैंक यू रकीब पटक, आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट रकीब पटक, दोस्त हु गेट्स एंग्री और द वंस हु आर ट्रूथफुल बिकॉज आई हैव ऑफन सीन लेयर स्माइल, चले थैंक यू सो मच रकीब पटक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने ज्वाइन किया जी। नेक्स्ट हेलो सुपरमैन गुड मॉर्निंग हाउ आर यू शो वंडरफुल है, सवाल का जवाब आई थिंक ना ना ना नेवर, मैं डॉक्टर इजहान फ्रॉम करंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट असद फ्रॉम करक, आंसर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर, यानी इसका मतलब यह है कि आज के प्रोग्राम में असद जो है मॉर्निंग स्टार हैं और असद आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, थैंक यू सो मच असद आपने ज्वाइन किया और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया और आपका जवाब ठीक है। नेक्स्ट सलाम स्वीट तारिक भाई सुबहर, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आपकी तरह ऑल लिस्टर को दिल वाला सलाम, आपको स्पेशल सलाम सायरा पठान फ्रॉम डुमेल, चले थैंक यू सो मच सायरा पठान आपने ज्वाइन किया डुमेल से और आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग। अच्छा असद के नाम में एक सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ क्योंकि असद ने सवाल का सही जवाब दिया है, सो एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग और ये स्पेशली असद के नाम।

नबील शौकत अली की वॉइस में ये सॉन्ग है और स्पेशली असद के नाम है। टाइम भी कम है, जस्ट एड मिनट बाकी है, वापस आते हैं सॉन्ग के बाद जल्दी।

जी नेक्स्ट मैसेज मैं डॉक्टर आइजा अजय सुपरमैन कल आपकी बर्थडे है एडवांस में हैप्पी बर्थडे कल शो होगी या नहीं

0: आज मेरी हस्बैंड की बर्थडे है, उनको विश करूं। चले आपकी हस्बैंड की बर्थडे है आज, तो उनकी आज की बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया। और नेक्स्ट अगेन गुलालई एंड सितारा मैसूर फ्रॉम बन्नो, वेलकम एंड सलाम टू सायरा पठान। आप ही
1: किसी ख्वाब से जुदा मत हो।
0: चले थैंक यू गुलालई, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।

जी ईरानी सदर ने कहा है कि अमेरिका पर इतमाद नहीं, मुजाकिरात के जरिए जंग का खात्मा चाहते हैं। ये कहना है ईरानी सदर का। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ मुजाकिरात पर इतमाद नहीं रहा, क्योंकि माजी में मुजाकिरात के बाद ईरान पर हमले और पाबंदियां आयद की गई। दूसरी जानेब ईरान ने अमरीका की जानेब से शरायत पूरी करने पर 7 रोज में अपनाए हर्मुज कॉलोनी की पेशकश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर हाजा अब्बास इराकची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमेरिका बाज शरायत पूरी कर दे तो अपनाए हर्मुज को 7 रोज के अंदर खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से पेश की गई शरायत नई नहीं बल्कि वही नुकात हैं जिन्हें इस्लामाबाद मफाहमत यादाश्त में भी उठाया गया था। सो बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है और लास्ट में जिनके मैसेजेस रह गए उनसे सॉरी। अच्छा सलाम ब्रदर बखीर रागले, मैं रोमी हा चेका तबीयत दे संग दे बर्थडे एडवांस मुबारक।

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ούγε γέζιε πότε σαν πάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ ο χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ μάρα με ζει μόχο κορτά national ο μαλτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλε βε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέ δι ο στούλ κούρβαλα να φασούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলা বেশি।

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: छोड़ दिया दिल को यूं बहना,
2: जाने तमन्ना जाने आदा,
3: जहां मिले आपको तफरी,
4: जहां मिले आपको मालूमात
3: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
4: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
3: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: खुशखबरी खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवि ददवाओ थोरो निशान वाला खुजीफा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवि भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पखपल सर बाने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तिल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण औ उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

0: तड़ाई माशी मिर्जी दार तो ये पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखाना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई मिर्जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक कीजिए दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी उस्टूल कुर वाला नफाशूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर से रबरो वो दर तो ये या कि पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
2: 42311 से पर 315 दक दे चिकम ने रिकॉर्डिंग शो प कम यो रेडियो बांधे प एफएम 88.4 रेडियो बांधे रिकॉर्ड दे कारखाना दे जा रिकॉर्डिंग जो खबर खैर दे नेट मसलब 88.4 सही था 88.4 चार्ज कम ता सो सर्च

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

और ये कि ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, अगर ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, उस शख्स को मेरी मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत में सुकून ना मिले।

और ए जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे, ए जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे। और सुन, अगर वो ना मिले तो तुम भी लौट कर मत आना।

0: और कहते हैं, कहते कि तुम उस शख्स की थकन का अंदाजा लगा सकते, तुम उस शख्स की थकन का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसको सफर के आखिर में पता चले कि वो सारा रास्ता गलत था।
1: क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा।
0: फिर कहते हैं, कहते कि शेख को नशों पर लगाकर मोहतरमा अपने नए आशिक को नशों से मना करती है।

और फिर कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी शख्स की वापसी नहीं चाहिए होती है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक बार ये मान ले कि उसने हमें वाकई तकलीफ दी थी। और कहते हैं कि उरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए खुदा ने जवाल रखा है। और फिर फरमाते हैं कि किरदार के मुनाफिक लोग हमेशा लफ्जों के हाजी होते हैं। और आखिर में फरमाते हैं कि सीधे सादे मिजाज वाले शख्स के साथ किया गया धोखा आपकी तबाही के तमाम दरवाजे खोल देता है। कहते हैं कि यकीन करें, वो इश्क बड़ा कमाल का होता है जिसमें आप दोनों को पता होता है कि हम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। इसलिए आला जर्फ ये है कि जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने की ताकत हो, आला जर्फ यह है कि जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने की ताकत हो लेकिन तुम वहां से खामोशी से चले जाने का इंतखाब करो, आला जर्फ यह है।

और बचपन की। बचपन की सबसे बड़ी गलती गलत फहमी यही थी बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होकर जिंदगी मजेदार हो जाएगी। क्योंकि हम उस माशरे में रहते हैं जहां गंद डालने वाले को नहीं बल्कि गंद डालने वालों को नहीं बल्कि गंद उठाने वाले को गंदा समझा जाता है। और कुछ लोग वायरस की तरह होते हैं, जिंदगी में आ जाए तो सुकून की फाइल उड़ जाती है। और माफ कर देना दिल की सखावत है, माफ कर देना दिल की सखावत है, लेकिन किसी को दोबारा उसी मकाम पर रखना जहां उसने आपकी तौहीन की थी अपनी खुददारी से खयानत है। और ये अलग बात है, ये अलग बात है कि मैं किनारे पर बैठा हूं लेकिन मुझे पता है कौन कितने पानी में है। और मैंने सफर से पहले ही तुम्हारी किश्ती में सुराख देखे थे।